मुस्लिम जुलि अधि तिरुल को फुर्रंज को दन खमने यें दन निन्यु फुर मग्गा सिका दगी दगी निन्यु फुर उम्र सिवाय निन्यु लेन फुर हर जलोलु दन दाव यरमम कन्नक कुम मुगी निन्यु गिन्नि लेन अधि यही गाव यें मेल निन्यु कुपाय रही बुलिकी दागी गिन्नि अधि यही देंगमाम अधियलन रंगल कुमासे वह लब्बैक अल्लाहुम्मा कुमासे नक्तक आ मैंने कोई रही नकललन होने से देंगे जिस रंग फितम दागुलिच मुनि सुभानअल्लाह मैं यम बही लिहा उलाई अन यसुद्दु अन बैत अन यसुद्दु अन बैत बन्नम जिस रंग मनि सुभानअल्लाह ये मुनाचिया ये खरे तखोले ने जुक ये आई तखोले ने जुक ये कब जादू ये लंदी तेरे ने को याल लगी मिलन बाई न्यू मगल का बजी नखलोलु निकुनी अम्मीची दवा न्यू मगल का बजी कोनक मिलन बाई को न्यू न्यू न्यू पर खास मोटा दिन रुतुने मुंफलेस दादी न्यू या कानो ये फिरी मात्रे من يا معشر قريش والله ما حالفناكم على هذا